0: हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: This is Link FM.

0: crime scene. As you can see, the suspects have been arrested, which are believed to be Zach Knight and Jasmine Walia.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7 बहुमजा है सीने।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, nazeersolicitors.co.uk. Nazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: ये तुसा की परेशान खलते हुए हो जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म की गाड़ियां नहीं एमओटी करने भाए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
6: ए एमओटी वाले हैं किधर ए

0: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.
1: It's all about you. It's all about you.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्कर है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफसाद है।
8: मेरा नाम इमराना है। 96.7।

0: वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा?
1: सीमा।
2: भाई ये अपनी वीरू की बहन है।
0: बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है।
3: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.

0: Queen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your Business Being Heard on the Radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

मियां तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है।

0: मिया आपसे एक बात कहनी है, आपसे एक बात कहनी है।
1: छोड़िए, खैर कोई बात नहीं है।

क्या दिलकश मंजर होता है, क्या दिलकश रातें होती हैं जब उनका तसव्वुर होता है और चांद से बातें होती हैं। हम होते हैं, वो होते हैं।

जान मैं कुछ सोच रहा हूँ, आए गर्दिश अय्याम मैं कुछ सोच रहा हूँ। साथी तुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, सागर को जरा थाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। कि कल रात मैं कदी में अजब हादसा हुआ, जाहिद शराब

सतस्ताल हैं, दुनिया के भी सताए हैं, सतस्ताल हैं, दुनिया के भी सताए हैं, तेरे सवाल का यारब जवाब देते हैं, बरोज़ हश्र है।

तौबा से मुझे जिद है, तौबा ना करूंगा क्यों। तौबा हजार बार करी करके तोड़ दी,

तौबा तौबा शराब से तौबा, नियत तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा तौबा शराब से तौबा, तौबा तौबा और शराब से तौबा।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Zia Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीव शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585।
6: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
7: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
8: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
9: वेलकम बैक। असामी कराम, प्रोग्राम में ब्रेक थी और ब्रेक बड़ी ज़रूरी है क्योंकि रेडियो स्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक को प्ले करना। कमर्शियल्स ब्रेक होती हैं जो रेडियो की किस्म की जान है क्योंकि रेडियो चलता है उनके ज़रिए है। तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ। ये कलाम जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा तो इंशाल्लाह इस कलाम के बाद आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करूँगा कि इसके बाद एक और कलाम आपको साथ ही सुनाया जाए।

थी, मैं दिलू रोग अवल्ला छोटी उम्रे ला बैठी, मैं दिलू रोग अवल्ला भूल के सारे जग दिया रस्मा।

इश्क दे मजबूर वेखे नहीं जांदे इश्क दी नगरी दे दस्तूर वखरे इश्क दी दुनिया दे मजबूर वखरे।

ब्रेक के बाद आप तमाम को खुश आमदेद कहते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ। समी कलाम, अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता दिया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है तो फिर आपसे डायरेक्टली उस वक्त बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त तो मैं भी स्टूडियो में मौजूद नहीं होता, आपके लिए पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो अगर आपकी पसंद भी कवाली हो तो आप ज़रूर बताया करें, कॉल किया करें दिन के वक्त या फिर हमें मैसेज कर दिया करें 07794818222 पे। आप सुन रहे हैं इस वक्त लिंक FM और ये है कवाली स्पेशल। चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

तो ब्रेक तमाम सुनने वालों को एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और यह क्वाली स्पेशल, और इस क्वाली स्पेशल में हमेशा हम आपको मुख्तलिफ कलाम सुनाते हैं। और अब ब्रेक के बाद चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Hello everyone, my name is Leo.
3: My name is Azir Iqbal.
4: This is Dr. Shah Nawaz.
5: This is Counselor Shafiq Mohammed.
6: My name is Ibra Hussain.
7: This is Aftab Ahmed.
8: This is Ibrit Tabassum.
9: I'm Chris Lewis.
10: My name is Javed Rashid.
11: My name is Mohammed Maru.
12: This is Sohail Mumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: Mazir Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: ये तुसा क्यों परेशान खलते हुए हो जी?
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले, वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, ओए कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
6: ए एमओटी वाले हैं किधर?
5: ए एमओटी प्लेस

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your Business Being Heard on the Radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
0: Linking communities. This is Link FM 96.7 FM.
17: Subh e azal ye mujhse kaha Jibrail ne jo aql ka

0: walking everywhere.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7 बहु मजा है सीने
2: रोजे दी जान
3: योर वेरी ओन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन
4: लिंक FM
5: लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव दिस इज लिंक FM

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: Link FM, your number one community radio station.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

0: the voice of the communities. 96.7 Link FM.
1: Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abed Rahman.
4: My name is Saeed Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Ashan.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
14: And the winner is
15: Your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
0: Sheffield's very own community radio station.
1: Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abed Rahman.
4: My name is Saeed Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Ashan.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
1: Link FM.
0: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
1: Link FM.
13: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।
1: इंग्लिश बोल के बताएं। आई लव यू।

0: My name is Abed Rahman.
1: My name is Saeed Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
11: And the winner is
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abed Rahman.
1: My name is Saeed Mudassir.
4: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
7: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.

0: कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी, मेरी आरती मुझसे बगावत करेगी, मुझे यूं जलील करेगी।
1: You are listening to Link FM.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अज़हरवी और तुसा सुन रहे हो लिंक FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: Accident ho gaya rapa rapa. अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलिव शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786786 2585।
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368, or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
8: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
1: You are listening to Link FM.
11: This is Link FM.
12: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261

और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि our WhatsApp is working now. 07939849339 is if you want to WhatsApp me. अभी तक हमें सिर्फ दो मैसेजेस आए हैं. कलीम ने हमें कहा है और आपको भी कहा है, सलाम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. वालेकुम अस्सलाम कलीम, हाउ आर यू? बाकी जो है वो ठंड प्रोग्राम है.

तो आप व्हाट्सएप कर दें। यकीन करें कि आप अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ना करें तो कोई प्रेशर नहीं है भाई। अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं, उम्मीद करते हैं ये ट्रैक भी आपको अच्छा लगेगा। 07939849339

अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ और आप सुन रहे हैं ड्राइव टाइम शो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ड्राइव हमारे साथ अच्छी गुजर रही होगी। जहां भी आप सफर कर रहे हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपका सफर आसान करे, महफूज करे।

0: Dream.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: जी तकदीर में तेरा मेरा साथ यहीं तक था, लेकिन समटाइम्स आप हर दफा तकदीर को आप दोष नहीं दे सकते भाई, बंदे की नियत के ऊपर भी होता है। मौसम भाई थैंक यू वेरी मच, आपने पहले कहा झूठा सॉन्ग फिर कहा अच्छा गीत, मैं क्या, मेक योर माइंड भाई, मेक योर माइंड।
1: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
0: अबे तू नहीं मरेगी और तेरी शादी भी नहीं होगी उससे। और एक और बड़ा जी हमें मैसेज आया जी, मैं क्या बोलूं, कौन लोग हैं यार ये, कौन लोग हैं भाई। मुझे सलाम किया गया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम सुन रहे हैं, साथ में कह रहे हैं आप स्टूडियो में हैं, नहीं मैं ड्रोन के ऊपर बैठा प्रोग्राम कर रहा हूं भाई। बंदा स्टूडियो में ही प्रोग्राम करते हैं ना भाई।

तो उम्मीद करते हैं कि अब तक का सफर आपका हमारे साथ अच्छा गुजर रहा होगा। ट्रैक्स तो अच्छे लग रहे थे यार वैसे वापस के, नहीं चलो एक और खूबसूरत ट्रैक मैंने आपके लिए लाइन अप किया है, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। रीमिक्स है, बताइएगा कैसा ट्रैक है।

वाह, इसका इरादा नहीं है कि मरने के बाद भी ये जान छोड़े भाई। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं यार, जो ना जीते जी आपकी जान छोड़ते हैं और ना मरने के बाद। अरशद भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और अरशद भाई क्या कह रहे हैं यार, कह रहे हैं इस्लाम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डू, आई एम गुड, आई एम गुड। अब कह रहे हैं आर यू स्टिल इन द स्टूडियो? नहीं भाई, बताया ना आज मैं ड्रोन पर बैठा हुआ हूँ। ड्रोन पे बैठ के पूरे शहर का चक्कर लगा रहा हूँ और साथ में लाइव प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। कौन लोग हो यार? मैं आपको बताया, जरा कमजोर सा आदमी हूँ, आराम से ड्रोन के ऊपर बैठ भी जाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है कि कुछ ऐसा भी मेरा वजन नहीं है कि मैं ड्रोन के ऊपर बैठूं और ड्रोन नीचे आ जाए। तो हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है भाई कि आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि मैं किसी दिन ड्रोन पर बैठ के प्रोग्राम करूं। यार मेरा वैसे ऐसा कभी नहीं होगा दिन। अभी तो मैं यहां मौजूद हूं ना, आप कर लें एंजॉय इस टाइम। जब मैं यहां नहीं हूंगा ना, तब आप याद करोगे मुझे। ये खास तौर पर मोहसिन भाई जो मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं, हर वक्त ताने दे रहे हैं मुझे, हर वक्त मैं नोट कर रहा हूं, नोट कर रहा हूं मेरे भाई। लेकिन मैं इनके तानों पे बुरा नहीं मनाता। अल्लाह ना करे भाई, मैं क्यों करूं यार ये वाला काम, मैं क्यों करूं? मैं कह रहा हूं आप लोग तंग इतना करते हैं कि किसी दिन मैं लिसनर से भाग ना जाऊं यार। हाँ बता रहे, बहुत तंग कर रहे हो आप लोग मुझे। मोहसिन भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है जिस पे मैं आपका मैसेज सुन सकूं। आई एम रियली सॉरी। और जो हमारा सिस्टम है उस पे हम रिकॉर्डेड मैसेज प्ले नहीं कर सकते विदाउट वेटिंग, सो आई एम रियली सॉरी। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आप शायद इस वक्त ड्राइव कर रहे होंगे एंड इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैसेज मी, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू मैसेज मी इफ यू आर ड्राइविंग। जस्ट गिव मी अ मिस कॉल। और अगर वेदर की तरफ देखा जाए, लेटर ऑन इन द नाइट इट विल बी मोस्टली ड्राई, देयर विल बी सम फ्यू क्लियर स्पेल्स इन द अर्ली आवर्स, मोर क्लाउड इज कमिंग ऑन फ्राइडे, फ्यू पैचेस ऑफ लाइट रेन, then it will turn dry and sunny through the afternoon, a warmer and a breezy day. Tomorrow minimum temperature will be 11 degrees Celsius, maximum 20 degrees Celsius. Saturday 9 and 17, Sunday 9 and 19, Monday 14 and 21. कुछ समझ नहीं आ रही भाई ये वेदर को क्या हो रहा है यार। कल शाम को मैं जा रहा था, वॉक कर रहा था, तो काफी ठंड थी भाई। ये मौसम भी क्यों लोगों की तरह होता है, जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो गर्मजोशी दिखाते हैं, और जब आपकी जरूरत नहीं होती तो ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल इस मौसम की तरह कि कभी यहां गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पहले जिंदगी में थोड़े कटे हैं कि एक मौसम का भी है। कौन आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में। और जुनेद यूसुफ इस लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है, मौसम की तरह ये भी बदल रहा है भाई। 5:16 5:16 पर आ गया।
जो बंदा कंट्रोल में, कह आई एम इन कंट्रोल, यू आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट? गाड़ी तो चलती नहीं है तुमसे भाई,

और मोहसिन भाई, अल्लाह आपको खैरियत से लेके जाए। आप कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू मैनचेस्टर, आई होप कि पाकिस्तान या कश्मीर जाने की आप तैयारियां नहीं कर रहे। एयरपोर्ट पे तो नहीं जा रहे? मैंने क्या, अगर जा रहे हैं तो अल्लाह खैरियत से आपको लेके जाए, खैरियत से लेके आए। अब ये वाला मैसेज मैं पढ़ूंगा नहीं, बट मुझे पता है जुनेद, मुझे पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। मैं समझा आप इतने हमसे वो हो गए कि आपने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन चलें आप खुद नहीं जा रहे। मोहसिन भाई, अल्लाह आपके लिए आसानियां करें और आसान सफर हो आपका मैनचेस्टर के लिए, और वापस भी आप खैरियत से आए इंशाल्लाह।

और मोहसिन भाई ने कलाम भेजा है तो पढ़ देता हूँ मोहसिन भाई के लिए कि, और जुनेद ने कहा था कि ये वाला बैकग्राउंड लगा भाई, पता नहीं कौन से ज़माने में चला गया जुनेद, उस ज़माने में मेरे सर के ऊपर बाल हुआ करते थे और मेरा दिल मेरे काबू में नहीं हुआ करता था और दिमाग चलता नहीं था, और अब मेरा दिमाग रहा नहीं और दिल भी रहा नहीं और बाल भी नहीं रहे। और मोहसिन भाई ने जो भेजा है एक कुछ पोएट्री भेजी है सफदर मजीद साहब की कि कहीं तोहमत बगावत की कहीं फतवे शरारत के, कभी इल्ज़ाम देते हैं वतन के साथ अदावत के, अगर कोई आज अपना है तो कल वही पराया है, हैं सारे खेल रियासत के, तमाशे हैं ये ताकत के।

0: जी उम्मीद करते हैं कि आज का ड्राइव टाइम शो भी आपने एंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की कि सब रंग मौजूद हों ड्राइव टाइम शो में। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ अच्छा गुजरा होगा। वाह, आप लोकल ट्रेवल कर रहे हैं या ऐप के जरिए कहीं और सुन रहे हैं, मोटरवेज पर हैं, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए और आपका सफर इसी तरह हंसी खुशी गुजरता रहे। इट्स टाइम फॉर मी टू से खुदा हाफिज। सो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी एक और ड्राइव टाइम शो के साथ। फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: ये तू सब क्यों परेशान खड़ते हुए हो जी?
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, ओए कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
6: ए एमओटी वाले हैं किधर?
5: ए एमओटी प्लेस

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं और रंजीत चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अफर है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमरान है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
9: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: ऑडियोवर गो
1: लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव दिस इज लिंक FM.
2: Coke Studio, Season 15.

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: This is Link FM.
15: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM.
16: Sheffield.

0: for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Link FM, your number one community radio station.
3: बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक एफएम 96.7। बहुत मजा है सीने।

कैप्टन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
9: Dil se dil ko milata, har rang har awaz ko sajata. Aapka apna radio station. Dil se aapke saath.
13: Link FM Sheffield.
15: Today, tomorrow, every day, Sheffield's Link FM.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azhari aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, nazirsolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre

0: workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: ये तुसा क्यों परेशान खलते हुए हो जी?
2: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है। कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं। ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले, वो हर किस्म ने गड्डियां नहीं एमओटी करने, चाहे कार वे या वैन, ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
2: ए एमओटी वाले हैं किधर?
1: ए एमओटी प्लेस

0: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: Reed.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
18: You know we had to do it one more time.

0: From the heart of the city, this is Link FM.
1: Good, very good. अच्छा बोलो बे
2: ए
1: में
2: ए
1: बोलो प्यार
2: बांबू
1: ओहो अच्छा बोलो लव
2: लड़ाओ
1: जान बोलो बोलो जान
2: हाँ
1: अच्छा ये बोलो Love you. तेरी आँखें बोलती हैं।
2: बता, बापे बोलती थे बता।
1: तेरी